जीमा मने हाय के जीमा मिटी बलेगा बलेगा बलेगा बलेगा ये यो हाय ये मिटी जाइ वना मन हाँ ये हाय के जीमा मने हाय के जीमा मिटी बलेगा बलेगा बलेगा बलेगा ये जाइ वना मन